Udoxi se ga medono chegno wai ga medodo GJ u ga playoffs medono su de bumps ga binano chegno second round ga medono chia ujima Colorado ne uji out Minnesota nishta judge you walk jitu ga wi ga bunano chia medono over time ujima Colorado we ojip se a judge ga ai ne od dogi ba chikani uji ga wi ga is kuch hado ga yo Minnesota ga okay ओ मगुई जो डॉक्स गया वही कन ऑफ मेगा या बच पंप्स भी ना नोच अगुन जी चाहिए जे मैं दो गया मीन नई मॉन्ट्रियल उदी दिस अ बफलो वॉच पर मैं दो इतनी सॉसी स्विच है वही मगे कुछ सी दो मैं को चाहिए तब दोन दोच गया वेगस अनहाइम्स पर मैं दो इच बिग स्टेम भी ना पतू स्पीच है वेगस मैग्निगन बयो जो ये यू सीरीज असन स्टोज का न्यूज नी सो बका न्यू दो अनहाइम अगुन जी स्नाक्सन है पंप्स भी ना नोच है वेब We web scored on a playoffs in mid-one-notch.